0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
7: Classic Nagumi, aapke apne Leica Gold par.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: के फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तुम।
1: लाइका गोल्ड,
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03963 5757। Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
1: in Dubai.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, like का रेडियो।
5: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: थी।
1: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
7: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

कोय। मने सुध होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की सुध। मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए। मने मग ना चले पंथ, मने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

0: Mantra's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: Visit travelhubworld.com.
4: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
6: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5 कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@laikamedia.co.uk.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज डॉट को डॉट यू के और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
8: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं भाई, इसमें सूचनाएं भी हैं, समाचार भी हैं, विचार भी हैं, गीत और संगीत वो तो है ही। दोपहर बाद एक बजे तक मैं मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं और मेरा नाम है रवि शर्मा। और बहन भाइयों, पहले आप सब की ओर से धन्यवाद कहूं काजल को, शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। दो दिन के अवकाश के बाद लौटी है, नेचुरली चेहरे पे निखार है, अच्छाई बाहर है, और बाहर तो बाहर भी है, बाहर यानी खिड़की से झांक के देखो तो आज भाई जो खिली हुई धूप है, हम लोगों को ज़्यादा सुहानी लगती है ये धूप। जब कभी पसीना लाने वाली भी धूप होती है ना, हम स्टूडियो से निकल के बाहर जाते हैं तो स्टूडियो में इतनी ठंड होती है साहब, इतनी ठंड होती है जैसे हम किसी हिमालय की चोटी पर बैठ के प्रोग्राम करके आए हैं। बाहर निकलते ही वो धूप इतनी सुहानी लगती है, प्यारी लगती है, क्या कहें। तो शर्मा जी, पहले अपनी डायरी खोलिए और शुरू हो जाइए। ना कुछ उनको जल्दी, ना हम बेसब्र हैं, जो दिल में है लब पे नहीं आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे हैं और हमें धीरे धीरे यकीन आ रहा है। मैं खुद बन के राहों में गुल क्यों ना बिखरूं, जो फूलों से भी है हंसी आ रहा है। जहां मुझको तन्हा वो करके गया था, वो वादे का पक्का वहीं आ रहा है। तो लीजिए, उन्हें स्वागतम कहते हैं साहब।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: जरा शादियां ने बजाओ मिलन के, वो बिछड़ा हुआ हम नशीं आ रहा है। जहां मुझको तन्हा करके गया था, वो वादे का पक्का वहीं आ रहा है। यहीं रखेंगे इसको।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: लोग सूरज का नाम लेते हैं पर अंधेरों से काम लेते हैं, और हंस की हूबहू नकल करके आज बगुले भी नाम लेते हैं। भाई हंस तो हंस होता है, और हंस की आवाज क्या बात है साहब। ये अलका याग्निक के साथ हंसराज हंस की आवाज सुनिए आपने इस गीत में। बड़े सुरीले गायक कलाकार हैं, और मैंने तो भाई कई बार बिल्कुल उनके सामने बैठ के नजदीक बैठ के सुनने का मजा ही कुछ और होता है। यानी कुर्सियां बिछी हो ना तो भी मैं जा करके उनके नजदीक, यानी जो है जमीन पे बैठना पड़े, चाहे स्टेज पर वो चौकड़ी मार के बैठना पड़े, लेकिन चाहे वो खान साहब हों, गुलाम अली खान साहब जब आए उनके भी पास बैठ के मैंने भाई ऐसे गायक कलाकारों के चरणों में बैठ के सुनने का मजा कुछ और ही होता है। और हंसराज हंस बड़े सुरीले गायक हैं भाई, यही गीत मैंने फरमाइश करके उनसे कहा कि भाई ये गाइए आप, और ये गीत कानों के रास्ते सीधा दिल में उतरने वाला है। इश्क दी गली बीचों कोई कोई लंगदा, और इससे पहले जो गीत सुनवाया ना, दोस्त बन के आए हो दोस्त बन के ही रहना, इस गीत के साथ भी कुछ यादें जुड़ी हैं बहनों भाइयों। भाई जब मैं मॉरिशस में शो करने गया था, अब आप पूछेंगे कब गए थे, 1980 की बात है, 1980 का साल था, और वहाँ पर एक बैंड है था उस समय, अब भी होगा, रिवोली बैंड, उसके कलाकारों के साथ भाई हमारे शोज जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। और जब वो स्टार्ट करते थे, मुझे इंट्रोड्यूस करते स्टेज पर, तो ये गीत गा करके बड़े अदब के साथ भाई, बड़े प्यार और सम्मान के साथ उन लोगों ने हमारे साथ कार्यक्रम की याद आए रहे हैं, आते रहे हैं। दोस्त बन के आए हो दोस्त बन के रहना, और अब बहुत ही मुश्किल है बेवफा तुम्हें कहना। तो भाई वफा निभा रहे हैं आप, हमें याद आ रहे हैं। मॉरिशस में दो बार गया मैं शो करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वेन्यूज़ पर हमारे कार्यक्रम हुए। हाँ, नाम भी कमाया, थोड़ा दाम भी कमाया, लेकिन वो पुराना समय भाई कभी मैं भुला नहीं पाया। थैंक यू मॉरिशस वासियों। फ्राइडे, शुक्रवार, वर्ष 2026 के जून महीने की 19 तारीख हो गई आज, और आज के कार्यक्रम में भाई सब कुछ है जो रोज होता है उसके अलावा। लेट मी टेल यू द पाउंड रेट फर्स्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज का रेट बता रहे हैं। भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 124 रुपए 45 पैसे। यस, 124.45 रुपीज फॉर वन पाउंड। बट दिस इज नॉट ओनली थिंग, भाई देर इज समथिंग एल्स एज वेल। वो कहते हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन to win a 75 pounds voucher every day. Yes, 1000 pound से ज़्यादा जब आप भेजें तो ये ऑफर साथ में है। और भाई अगर आप 2000 pound या उससे ज़्यादा भिजवाते हैं तो देर इज़ ए चांस टू विन 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब फुटबॉल का महाकुंभ वर्ल्ड कप चल रहा है, 3-3 मेज़बान हैं अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। और भाई कल का मैच मेज़बान की टीम ने खेला और अच्छा खेला, साउथ कोरिया के ख़िलाफ़ 1-0 से उन्होंने जीत हासिल की। तो मेक्सिको कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। अभी आने वाले मैचेस के बारे में बता दें, एक और मेज़बान यूनाइटेड स्टेट्स आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ रहे हैं, और वो ग्रुप डी का मैच होगा शाम 8 बजे, और रात 11 बजे स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को। तो भाई फुटबॉल से हम आपको जोड़े रखेंगे, किन की बदौलत, हमारे जो भाई स्पॉन्सर्स हैं रैक लॉ, उनकी एक और ऑफर है। वो कहते हैं कि गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद रैक लॉ इफ़ यू मैंशन लाइका। लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. the Leica Radio Network across London, Manchester.

आइए याद करें एक महान कवि को जिनकी ये रचना भाई बरसों से ताजगी का एहसास कराती है। रफी साहब की आवाज में आती है।

0: मजार दे,
1: ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखती रहे। कविवर नीरज की रचना, भाई आपने रफी साहब की आवाज में ये गीत सुना। और अब समय पर नजर डालें तो भाई वक्त हो गया खबरों का, और खबरों में यहाँ ब्रिटेन में तो भाई चर्चा में है बर्नहम इवेंट्स द मेकर्सफील्ड बाई इलेक्शन, और भाई उनके चुनाव जीतने के साथ ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर एक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने वालों में जो है नेता माने जाते हैं। अपनी विनिंग स्पीच में उन्होंने कहा है कि जनता ने हम पर भरोसा किया और हमें उनके भरोसे पर खरा उतरना है। दैट वाज हिज विक्ट्री स्पीच। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी हैव इन द न्यूज। पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे कौन?
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a gold.
1: Like a radio network. Ab aap रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के तालिबान शासन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी एयरफोर्स ने कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस से जुड़े कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया है कि हमले बलूचिस्तान के गुलिस्तान और शकराब इलाकों में आईएसआईएस खुरासान के हेडक्वार्टर और खैबर पख्तूनख्वा के कई जिले के कंबरखेल इलाके पर किए गए हैं। और कजई जिला, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इन जगहों का इस्तेमाल कुछ दुश्मन खुफिया हलकों की मदद से अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग बनाने के लिए किया जाता था। पहले भी ये जगह कई घातक हमलों की योजना और शुरुआत के लिए इस्तेमाल की गई थी। दिल्ली का पहला ऑल वुमन पुलिस स्टेशन उत्तर दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में आज खुल गया है, शुरू किया गया है ऑल वुमन पुलिस स्टेशन। इसका मकसद जो है महिलाओं को सिक्योरिटी देना और सिक्योरिटी को मजबूत करना और उनके खिलाफ होने वाले क्राइम्स की जांच करने के काम को बेहतर बनाना होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के इल्जाम पर पहली बार बोले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने आज कहा है कि एसआईटी गठित हो गई है और 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राम भक्तों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए, चिंता मत कीजिए, 15 दिन इंतजार कीजिए, एसआईटी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, और दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा, सब साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की कुछ खबरें काफी वायरल हो रही थी पिछले दिनों में। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि देश के दक्षिणी इलाकों के कई शहरों पर इजराइल के अटैक्स जारी हैं। इनमें कम से कम 16 लोग मारे जा चुके हैं। मीडिया के अनुसार आज सुबह से इसराइली फौज नबाती शहर और उसके आसपास लगातार हमले कर रही है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में यह कहा गया था कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर फौजी कार्रवाई बंद की जाएगी। इसी बीच अमेरिका और इसराइल के बीच साउथ लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रोकने को लेकर के मतभेद बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, वहां बीजेपी नेता समेत 3 को वहां जिंदा जला दिया गया, ये खबर आ रही है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कल गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस विवाद में दोनों पक्ष बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, यानी आपसी रंजिश का मामला है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की अच्छी हेल्थ और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी अच्छी हेल्थ और उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं। भारतीय ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल चोटिल होने की वजह से वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। कल नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप ए, परसों जो मैच खेला गया था नीदरलैंड्स के खिलाफ, उस मैच में फील्डिंग करते हुए श्रेयंका पाटिल का एंकल मुड़ गया था। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से ग्राउंड से बाहर ले जाया गया था। श्रेयंका पाटिल की जगह अब टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम में प्रेमा रावत को शामिल किया जा रहा है। प्रेमा रावत ने हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग और विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल रात एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। इसमें वो हिंदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि मेरे दोस्त नरेंद्र, नीस, एवियन और पेरिस के दौरे पर आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई है। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने अंग्रेजी में कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह संदेश सही होगा। डियर प्राइम मिनिस्टर, इस दोस्ती के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगली फरवरी में फिर आपसे मिलूंगा। ईरान की एक अदालत ने गायिका परस्तु अहमदी और कारवास राय कंसर्ट के 8 दूसरे मेंबर्स को 74 कोड़े मारने की सजा दी है, 74 लैशेस। साथ ही इन पर 2 साल तक देश से बाहर जाने और 2 साल तक कला से जुड़ी किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने पर रोक लगाई गई है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई उन पर आरोप है कि इंटरनेट पर गलत और अश्लील चीजें डालकर ये लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, उनकी शालीनता को नुकसान पहुंचाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स अधिकार वाली काउंसिल में भारत की स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हो रही वायलेंस का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर कई इल्जाम लगाए हैं। अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली गई है। दोनों मुल्कों के बीच समझौते पर हुए दस्तखत के ठीक बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते पर उनकी अलग राय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर दस्तखत करने की इजाजत दे दी है। ईरानी मीडिया ने कल शाम को मुस्तफा खोमेनी का बयान छापा प्रकाशित किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
4: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
1: लौट आइए फिर से संगीत की ओर और आइए मिलकर के एक दृढ़ पक्का इरादा करें, साथ रहने का मजबूत वादा करें। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ है।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और आप सुन रहे हैं रवि शर्मा के साथ मनोरंजन। यस, दैट्स माय नेम। और बहनों भाइयों, मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। अगर आपने रेडियो भी सुनना शुरू किया है, भाई स्वागत है आपका। अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेट मी टेल यू दैट दिस इज द टाइम व्हेन आई ब्रिंग यू थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं भारत से हरविंदर मलिक का। हरविंदर मलिक कह रहे हैं कि जी, पहले तो आप चिंतन से पूर्व हमारी बहन परवीन रानी को बधाई दीजिएगा, फिर से वो काउंसलर चुनी गई हैं। और भाई चुनी गई है बोरमवुड क्षेत्र से, लेकिन उससे भी ज़्यादा बधाई उनके बेटे को मेयर बनने पर, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो परवीन और तुषार, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप ब्रिटेन का नाम भी रोशन कीजिए, हरियाणा का और भारत का नाम तो आपने रोशन किया ही है। गॉड ब्लेस यू। तो हरविंदर मलिक लिखते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये सब कहते हैं, लेकिन एक विचार मैं भेज रहा हूं, इसे शामिल कीजिएगा। तो हरविंदर जी, जो विचार आपने भेजा है, हमारे यहां हमारे एक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं देशराज बैसन साहब, उनकी ओर से भी ये विचार हमारे पास पहुंचा हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रस्तुत करते हैं आज का विचार, यानी आज का चिंतन।

छोटी सी कहानी आज के चिंतन में, पर बहुत प्यारी, प्रेरणादायक, और मुझे ऐसा लगता है शायद पहले भी मेरे कार्यक्रम में ये शामिल हो चुकी है, लेकिन अच्छी बातें बार बार दोहराना अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच टू बोथ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स। भाई कहानी है एक फूल बेचने वाले छोटे बच्चे की। ये छोटा बच्चा एक दयालु व्यक्ति को भगवान का दोस्त समझ लेता है। बात यह है कि एक ये छोटा सा बालक चिलचिलाती धूप में एक मंदिर के बाहर नंगे पैर फूल बेच रहा था। अब तपती रेत पर खड़ा नंगे पैर बार बार उछलता, फिर कहीं जाकर के पैर पानी में भिगो के लाता, फिर आकर के मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता, क्योंकि फूल यहीं बिकते रहे थे उसके। तपती सड़क पर या तपती रेत पर चलते हुए कार में बैठे एक भले आदमी की नजर इस बच्चे पर पड़ी। उसने गाड़ी लाके उसके पास रोकी। बच्चा खुश हो गया कि कार वाला फूल खरीदेगा, पर वो आदमी गाड़ी से बाहर आया और बच्चे की तकलीफ का एहसास करके उसने मंदिर के पास ही एक जूतों की दुकान देखी और उस बच्चे को वहां ले जाकर के उसके साइज के जूते खरीद दिए उसे। जूते भी और मोजे भी, और दयालु व्यक्ति ने बच्चे को जूते पहनाए अपने हाथों से, सर पे हाथ रखा, प्यार दिया। जूते पहनते ही बच्चे ने भाई उसकी आंखों में चमक आ गई थी, खुश हो गया, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता आदमी हाथ छोड़ने को तैयार नहीं, बच्चा सवाल पूछता है, आप भगवान हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, सच बताइए, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली? कल रात ही तो मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं, दोपहर में बड़ी तकलीफ होती है, और आज आप आ गए मदद करने, मुझे जूते दिला दिए, कितना सुकून मिल रहा है, आप जरूर भगवान हैं। नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, उस दयालु आदमी ने समझाया। तो फिर आप भगवान के कोई दोस्त होंगे जो भगवान ने आपको भेजा है और कहा है बच्चे को जूते दिलवाओ। बच्चे को उसकी प्रार्थना से खुश होकर के ये दया की है प्रभु ने। वो आदमी मुस्कुराया, कहने लगा ठीक है, मान लो मैं भगवान का दोस्त हूं, भगवान का भक्त हूं, भगवान का प्रेमी हूं। जो भी व्यक्ति दया करता है, दयालु है, जिसके मन में करुणा है, ईश्वर का मित्र तो होता ही है। ईश्वर तो सब में निवास करता है, पर जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हम परोपकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मिले राह में जो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मुझे अपना दोस्त बना लो, अपना प्रिय बना लो। देखा है ना भाइयों, भगवान का दोस्त बनने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हृदय में करुणा का भाव जगा लो, फिर तो यूं समझिए उस ईश्वर का स्वरूप आप में ढल जाता है। देने वाले के कई रूप हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं, पर ये सब उसी के काम हो सकते हैं, ईश्वर के, परमात्मा के।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आलेख हरविंदर मलिक का भारत से उन्होंने भिजवाया, साथ में भाई बधाई संदेश परवीन रानी के लिए और सबसे छोटी उम्र के मेयर बनने पर उनके बेटे तुषार के लिए बधाई संदेश। बहुत सारी आशाएं भविष्य में, बहुत सारी उम्मीदें भाई बांधनी है लोगों ने तुषार के साथ, बधाई भाई। बहुत सारे लोगों की जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं चिंतन के विषय में। अर्जुन कहती हैं भजन भी बहुत सुंदर और चिंतन भी बहुत सुंदर। सुनीता शर्मा कहती हैं व्हाट ए वंडरफुल थॉट। वेरी नाइस चिंतन, हैव लिसन्ड दिस स्टोरी विच इज वेरी इंस्पायरिंग। और रानी स्लोवाली वत्सला जी, आप सबके संदेश मिले हैं। परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ता, विशेष करके माता का संबंध, माँ कभी अपने बालक को क्या करती है, इग्नोर नहीं कर सकती ना, पिता भी नहीं कर सकता। बताऊं आपको वत्सला जी, फादर्स डे आ रहा है और एक गीत फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमित विज कह रहे हैं पिताजी को ये दुनिया छोड़े कई बरस हो गए हैं, लेकिन हर समय वो हमारे साथ हैं, आशीर्वाद के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। पम्मी स्लाव से कहते चिंतन बहुत अच्छा लगा। रानी आप भी स्लाव से संदेश भेज रही हैं। फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में हमें सुनते हैं और हमेशा चिंतन के विषय में अपनी राय भेजते हैं। और आप हैं अंजलि सिंह। अंजलि कहती हैं कि जितने बार भी इस विचार को हम सुनते हैं हमें हर बार नया लगता है। हो सकता है आपने पहले भी ये कार्यक्रम में शामिल किया हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन आज भी एक नएपन के साथ हमने स्वीकार किया। बैक्सली हित से अंजलि, थैंक यू वेरी मच। राजीव पटेल, रागनी, महेंद्र बजारिया, अरुणान, भूपेंद्र पटेल, महेंद्र क्रॉयडन में, विजय सटन में, जगदीश जी बुशी में, जैस्मीन, आपका संदेश मिलता है एक सुंदर खूबसूरत तस्वीर के साथ, बाबा जी के दर्शन करा देती हैं आप, ट्रू वाहे गुरु जी। देशराज बैसन साहब, आपका तो कहना ही क्या, बहुत सारी सामग्री हमारे कार्यक्रमों की शोभा बनती है, आप भेजते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। मानसी सहर, रंजन और सलमा मेडस्टोन में एहसास कराती हैं हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। रवि जी, भरत गंगाराम और नीलम जी, थैंक यू वेरी मच, सुन रही हैं प्रोग्राम। हिना, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हिना आपने एक जोक भेजा है, जोक क्या कह रहा है, जोक कह रहा है कि आज मैंने सूर्य देव से, सूरज से, सूरज देवता से यानी रवि से पूछा कि जब वर्षा जी आती हैं तो आप क्यों छुप जाते हैं, वर्षा यानी बारिश, जब वर्षा आती है तो आप क्यों छुप जाते हैं। सूरज ने कहा बताऊं क्यों छुप जाता हूं, आप ही बताइए, लेडीज के साथ कौन माथा पच्ची करे। और ये जोक भेजा है एक लेडी ने, थैंक यू हिना जी। हेतल सोलंकी, आपका संदेश भी मिल गया है भाई। वीरेंद्र चौधरी जी, सो नाइस ऑफ यू, आपको चिंतन अच्छा लगा। एजाज भाई चैशम में सुनते हैं। एजाज भाई आप ना भी लिखे ना तो भी हमें पता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अनिल सोनी जी वियाना में सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच भाई। आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए और आप सबकी ओर से हरविंदर मलिक को ये धन्यवाद पहुंचाते हुए जिन्होंने आज के चिंतन के लिए सामग्री भेजी। आइए अब चिंतन को समेटते हैं और अपने मूल रंग की ओर लौटते हैं।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, रेट अब भी अच्छा चल रहा है। भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो इनकी सेवाओं का फायदा उठाइए क्योंकि आजकल तो ऑफर भी साथ लगी हुई है। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 124.45 रुपीज, भारतीय करेंसी में 124 रुपए 45 पैसे एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कहते हैं कि इफ यू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच जून के महीने में ऐसा करने पर भाई आपको 75 pounds वाउचर एवरी डे जीतने का चांस मिल सकता है इफ़ यू सेंड ओवर 1000 pounds। और अगर 2000 pounds या इससे ज़्यादा की राशि भेजें तो भाई देर इज़ ए चांस टू विन 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
4: Leica Radio.
2: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भाई फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन आपको दें, वर्ल्ड कप महाकुंभ चल रहा है फुटबॉल का, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीन मेज़बान। और भाई कल मेज़बान ने अपना पहला मैच जीत लिया, मेक्सिको ने 1-0 से साउथ कोरिया को पराजित किया। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मैच में यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, कड़ाके की टक्कर होगी, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल से, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इसके अलावा भाई एक और बात, जो हमारे ये स्पॉन्सर्स हैं ना फुटबॉल के, उनका कहना है कि अगर कोई आपका नाम लेके हमसे संपर्क करता है, कौन है स्पॉन्सर्स, रैक लॉ वाले, वो कहते हैं कि अगर कोई लाइका मेंशन करता है और आपका नाम लेके हमें फ़ोन करता है तो 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस हम उन्हें देंगे। यस, आप जानते हैं भाई वकीलों का समय कितना महंगा होता है, बट दे से दैट 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विल बी फ्री इफ एनीबॉडी कॉल्स एंड फोन एंड मेंशन लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Leica Gold.

0: लाभ आ पवित्र यात्रा में जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-633। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
2: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
3: Leica.
6: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS at Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208-900-2323.
7: और लीजिए साहब, अब बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए पहले धन्यवाद दें भाई बंसरी, हमें सुन रही हैं तंजानिया में, दार एस सलाम तंजानिया में। अच्छी जगह है भाई, गया हूँ मैं जंजीबार भी गया हूँ और कहाँ कहाँ प्रोग्राम मुझे ले जाते हैं, लेकिन बंसरी जी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुँचना बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए, आपके साथ साथ और भी हमारे कई श्रोताओं ने याद दिलाया है कि वीकेंड पर पिताश्री को हम प्रणाम कहना चाहते हैं। भाई जिनके पिताजी उनके साथ रहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, और जिनके पिताश्री दूर हैं या पिताश्री दुनिया में नहीं, तो बता दें आपको कि पिता आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। फादर्स डे है 21 जून को और दुनिया भर में मनाया जा रहा है, मतलब यहां तो मना ही रहे हैं भाई। फादर्स डे एवरी डे है क्योंकि पिता की बदौलत ही हम दुनिया में हैं। पिता हमारे रोम रोम में रमे हैं, हम उनसे बने हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही परमो तपः, पितृम प्रीति आपन्ने प्रियंते सर्व देवता। भाई जिन्होंने अपने पितरों को या पिताश्री को प्रसन्न कर लिया ना, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा से, आस्था से पिताजी को याद कीजिएगा 21 तारीख को।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

0: मुकेश जी की आवाज में भाई कंप्यूटर ढूंढ लाया, ये गीत चिंतन का विषय हो सकता है। ये तो
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Like a extra podcast update.
0: याद दिला दें आपको भाई, हमारा नया एपिसोड जो है वो आ चुका है और अवेलेबल है, पॉडकास्ट एपिसोड 21। ये है साउथ एशियन विमेन इन स्पोर्ट्स, यस, होस्टेड बाय दीप राजा। खेल कूदों में भाई, खेलों में कितना बढ़ चढ़ करके एशियन महिलाएं जो है भाग ले रही हैं, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, और भाई दूसरी महिलाओं के मुकाबले एशियन विमन जो है अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बना रही हैं। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आप ज़रूर देखिएगा ये लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: वी हैव ऑल बीन देयर। Noisy uni flatmates, music blaring, phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS, built for you. Dell.co.uk/learning.
4: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. A 24-hour line.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and ticket.
9: Exclusive radio partner Laika Radio.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
15: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
16: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
15: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
16: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
15: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
15: કોલ 02089002323। ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
1: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક, પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર, રગસાન। Like a Goon, London ka number one Asian retro music station, ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par। Alexa pe bolo play Like a Goon aur online suno likeagoon.com pe। It's summer on the Like a Radio Network।
0: Laut aaiye sangeet ki duniya mein aur kuch aisa suniye aur sunwaiye के पांव थिरकने लगे, पांव के नीचे से जमीन सरकने लगी।

0: हरिहर हैं इस सप्ताह के कलाकार भाई। 4 जुलाई को तो उनका शो बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं, उन्हें लाइव सुनेंगे, लेकिन इस सप्ताह के एंड तक यानी वीकेंड के दौरान भी उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी लाइका रेडियो नेटवर्क की लाइका गोल्ड पर, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक ऑन लाइका गोल्ड।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

भाई ये शादी के बंधन में बंधे हैं और जर्मनी से शिवम बारात लेके आए और कहते हैं कि जर्मनी में हमारा सारा परिवार आपके प्रोग्राम्स को सुनता है। भाई यहाँ जो हैं लड़की वाले और वहाँ लड़के वाले दोनों ही मेरे कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं, इसलिए भाई शादी के बंधन में बंधने वाली इस मंगलमय जोड़ी को परवेश जी और उनके परिवार की ओर से और शिवम आपके जगह परिवार की ओर से भी भाई आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। शादी का ये गीत शिवम और निकोला के नाम।

0: सचदेवा परिवार की ओर से भाई उनकी बेटी की शादी शिवम के साथ जर्मनी में जा रही है बेटी दुल्हन बनकर की, और पिता जो है विदा कर रहे हैं कन्या को। भाई बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ ही शादी का गीत हमने बच्चों के नाम किया और शादी के बंधन में बंधने वाले बच्चों के नाम, और अब बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। माता पिता के लिए तो बच्चे ही रहते हैं भाई, कितने भी बड़े हो जाएं। तो भाई जर्मनी वालों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, तो जानकर बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहेगा। एक बात आपने कही भाई, कौन कह रहे थे कि जब जब आप छुट्टियों पे जाते हैं ना अच्छा नहीं लगता। अरे साहब छुट्टियों पे कहाँ जाते हैं, जर्मनी ही तो आते हैं। कई बार छुट्टियां लेकर जर्मनी का ही चक्कर लगता है भाई, तो कभी वहीं आके मुलाकात करेंगे आशा माई मंदिर में आपके साथ।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
1: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: और साहब क्रिकेट अपडेट लेकर के हमारे कमल प्रभाकर लाइन पर हैं। भाई क्या चल रहा है विमन क्रिकेट में? हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कमल जी।
5: रवि जी गुड आफ्टरनून। अभी तो कुछ नहीं चल रहा,
0: हाँ?
5: अभी तो मैच तो शाम को स्टार्ट होगा।
0: हाँ, हाँ?
5: तो न्यूजीलैंड इज प्लेइंग आयरलैंड टुडे, तो
0: अच्छा।
5: वो भी अच्छा मैच होना चाहिए आज, तो यू नो इट शुड बी अ गुड मैच दैट स्टार्ट्स लेटर ऑन टुडे, तो 18:30। तो बाकी कल के मैच भी बहुत अच्छे मैच हुए थे। तो अभी लेडीज जो क्रिकेट है, देखो गोइंग टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड,
0: इट्स
5: गेटिंग मोर एक्साइटिंग, नेल बाइट फिनिशिंग, तो यू नो द क्रिकेट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। और अभी इतनी गर्मी हो गई है, जैसे आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका उधर खेल रहे हो।
0: जी जी जी,
5: कंडीशंस आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द एशियन गेम्स।
0: आज का
5: माहौल अभी बन रहा है।
0: आज का मैच कौन से ग्राउंड में है?
5: हेलो, आज का ग्राउंड है साउथैम्पटन में।
0: साउथैम्पटन में बॉल, हाँ
5: जी जी, तो इट विल बी अ गुड डे आई थिंक। जिसने भी जाना है, जूनियर टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल, बट इट्स अ ग्रेट मैच टू वॉच।
0: थैंक यू,
5: आगे भी बहुत बहुत अपडेट देंगे आपको।
0: थैंक यू वेरी मच कमल, आई अंडरस्टैंड बिकॉज एट दिस मोमेंट द मैच इज नॉट गोइंग ऑन, लेकिन कल के मैच का नतीजा और आज होने वाले मैच के बारे में जानकारी आपको मिल गई। बहनों भाइयों, विमन ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट इज गोइंग ऑन, और भाई मैच के साथ जोड़े रखते हैं हम कमल जी के थ्रू, आपको जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू कमल जी।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: और भाई एक दो सूचनाएं आपके लिए। एक तो हम बताना चाहते हैं कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कंफर्म्ड विद पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। बड़े मशहूर हैं साहब, उनकी डिटेल्स हमारे LEICARadio.com पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भाई याद दिलाना था आपको कि द लेजेंडरी सिंगर हरिहरन रिटर्न्स टू द UK फॉर सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, 4 जुलाई रविवार को इनका शो हो रहा है और बड़ी धूम मची है। टिकट्स एट southbankcentre.co.uk, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। ये दो बातें आप तक पहुंचानी थी। तीसरी बात ये कि राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग दिस प्रोग्राम, भाई हमें फिर से याद दिला रहे हैं वीरेंद्र चौधरी के ठीक इस समय उनका एक बड़ा भक्ति भाव पूर्ण जो है संगीत रिलीज हो रहा है, महादेव पुणाहारी भारत में। और भाई महादेव पुणाहारी ये बाबा बालकनाथ जी के अनुयायियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कल हमने बधाई दी थी कल होना था रिलीज, लेकिन किसी टेक्निकल वजूहत पर ये कल नहीं हो सका, तो आज इस समय ठीक 12:30 बजे, 12:35 हो गए हैं यहाँ के समय के अनुसार रिलीज हो रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको और वीरेंद्र चौधरी जी आपके साथ साथ शहजादा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये भावपूर्ण भक्ति संगीत लोगों के घरों तक पहुंचे, दिलों तक उतरे। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।
3: ये है लाइका गोल्ड।
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथऑल ट्रेवल फिर याद दिला रहे हैं आपको कि भाई छुट्टियां मनाने के लिए इन गर्मियों में ज़रूर जाइए और साउथऑल ट्रेवल की ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए। उनका नाम, उनका काम, उनका मुकाम आप जानते हैं, बड़े प्रतिष्ठित ट्रेवल हैं साउथऑल ट्रेवल, ट्रेवल एजेंट हैं भाई। 40 बरसों का उनका भरोसा लोगों के दिलों में राज करता है। ट्रैवल अवार्ड, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो विजिट साउथऑल ट्रैवल, कॉल 0208-574-8410।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Left it late for Father's Day? Don't worry, Moonpig's got you. You can still celebrate your dad with the UK's most personalised card, delivered in time for the big day. Add stickers, your favourite photos, even a message in your own handwriting. All sorted. No faff, no panic, and you'll still be Dad's favourite. Plus, get 20% off with code DAD20. Because this Father's Day, everyone deserves a...
3: Moonpig.com.
2: To verify, see moonpig.com/personalised.
4: Like a go.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: London, good news. Aapka favourite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
4: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
15: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
16: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
1: और लीजिए साहब, एक गीत उनके नाम लगाते हैं जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार भारत की अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में जो हैं राहुल गांधी, वो उन दिनों यहाँ लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। अनिसा नासिर प्रोग्राम कर रही थी, कहती है राहुल गांधी, यू मीन दी राहुल गांधी। बहुत साल पहले की बात है, शायद सनराइज़ पर। तो भाई उन्होंने कहा हाँ, तो भाई उन्होंने एक गीत की फरमाइश की और अनीसा जी ने उनके लिए बजाया, फिर सबको बताया उन्होंने कि आज राहुल गांधी ने हमें फ़ोन किया। भाई आज मुझे फ़ोन तो किया नहीं, हाँ देखिए वैसे मुझे बड़े बड़े लीडर्स ने भाई फ़ोन किया है कभी कभी, जैसे मोदी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंक्रो ने, स्ट्रामर ने, इन्होंने तो मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया, बताया है कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू राहुल। लेकिन भाई उनके साथ साथ आज आंग सान सू की, पॉलिटिशियंस में देखिए उनका भी जन्मदिन है। ये म्यांमार की एक नेत्री हैं और भाई आजकल तो क्या कहें, बस वहाँ सत्ता परिवर्तन और पॉलिटिशियंस की हालत ऐसी होती है, पर हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। इसके अलावा आज जन्मदिन मनाने वालों में एक बड़ा विवादास्पद नाम है, सलमान रुश्दी। भाई वही जो जिन्होंने वो सैटानिक वर्सेस लिखी थी, मुंबई में 19 जून को 1947 में पैदा हुई थी। और सोमू मुखर्जी आज पैदा हुए। भाई फिल्मी दुनिया में अगर और कुछ नाम देखूं तो और कौन पैदा हुए थे आज, भाई एक सलोनी छोटी सी बच्ची जो कॉमेडी शो में आती थी उसकी अपने कॉमेडी सर्कस में, तो भाई उनका भी जन्मदिन आज है। और आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन आज है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ, आशुतोष आशीष विद्यार्थी, ये भी फिल्मी दुनिया से हैं। और मुकेश खन्ना जो महाभारत में आए थे भाई, उनका भी जन्मदिन आज है। तो आपके घर परिवार में भी किसी का है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये गीत तमाम जन्मदिन मनाने वालों के नाम
16: एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
17: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: गीत बाद में सुनवाएंगे भाई, पहले आपको ये रेट्स बता दें। और इस समय जो रेट्स चल रहे हैं लेम्फाई की, एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में वो दे रहे हैं 124.86 रुपीज़, पाकिस्तानी 368.02 रुपीज़, श्रीलंकन रुपए 441 यानी 441.59 और बांग्लादेशी टके 162.42, अफगानी 83.93 एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग।
0: Leica Radio. A
18: you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: और साहब लगे हाथ सुन लीजिए, गोल्ड का रेट सोना लुढ़का कुछ सस्ता हुआ, यकीन करें या ना करें, बट टुडे एट दिस टाइम द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 100.84 पाउंड्स पर ग्राम, 100 पे आ गया है।
18: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.

अब देखते हैं भाई अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के ठुमके। यूसुफ भाई शुरू हो जाओ वहीं पे जहां भी हो।

0: कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में। भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.
3: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी।
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
11: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
13: Manoranjan with Ravi Sharma. और बहनों भाइयों, अब रवि शर्मा के लिए आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। भाई बता दूं कि कुछ दिनों के लिए अब मैं फिर छुट्टी पर जा रहा हूं, लेकिन मैं दूर जाके तुमको दिल से भुला सकूंगा, ये वहम अपने दिल से बिल्कुल निकाल रखना। मैं खुद भी एहतियात ही बरतूंगा, मगर तुम जब तक मैं आ ना जाऊं अपना ख्याल रखना, याद करना और याद आना। 2 वीक के लिए छुट्टी पर रहूंगा, तब तक के लिए अपने दोस्त रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। जुलाई में 6 तारीख को वापस एयर पे स्टूडियो में हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए सितारों को नजरों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और तुम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।

0: समा सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरुस्ती यारो नीलाम करो सुस्ती।
1: एस डी बर्मन का संगीत और भूपिंदर सिंह ने गाया किसके साथ? किशोर कुमार के साथ। यस, फिल्म प्रेम पुजारी।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
3: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
2: मेकिंग समर फील बेटर। दिस is like a gold.

0: केनिया टंगनिका युगांडा कितने गया? कोई गल नहीं, युगांडा भी पा देंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट आपको मैं सिंगापुर भी ले जाऊंगा इस आवर में। यस इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। नो यू डोंट, कोई गल नहीं। हो तो आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कभी केनिया ले जाता है, कभी टंगनिका ले जाता है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इज टंजानिया जॉइनिंग विद ज़ंजिबार। एंड हाँ, इट्स कॉम्पिटिशन टाइम नेक्स्ट। यू नो दैट कॉम्पिटिशन में क्या होने वाला है? यू नो इट्स फादर्स डे ऑन संडे एंड देर इज अ स्पेशल जेस्चर फ्रॉम जैमिन्स। दिस शो गोल्ड आफ्टरनून्स इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन। सो दे सेड लेट्स ऑल विश हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम जैमिन फूड्स। एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन टू एवरीबडी इन द मिडलैंड्स फॉर दिस आवर। सो लंदन वालों, आप प्लीज इस आवर में अप्लाई मत कीजिएगा। आई रिपीट, जिनको नहीं सुनाई दिया उनको मैं वापस बोलता हूँ, ये आवर में लंदन वालों को गुजारिश है, डू नॉट अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन, इट्स ओनली फॉर मिडलैंड्स। सो आपको टाइप करना है जैमिन मिडलैंड्स, ताकि हमें पता चले कि यू आर एक्चुअली फ्रॉम मिडलैंड्स। ओके, जैमिन मिडलैंड्स। एंड देन आपको आपका पूरा नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर, इनमें से कोई भी एक आइटम मिस होगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, आपको जैमिन मिडलैंड्स लिखना है। लिख लिया? ओके। उसके बाद आपका नाम, ऑफ कोर्स नाम तो चाहिए, फिर टेलीफोन नंबर चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, क्योंकि वो हैम्पर है ना, वो इतना बड़ा ह्यूज खूबसूरत फादर्स डे का हैम्पर जो आता है जैमिन से, वो आपके एड्रेस पे आएगा। सो जब एड्रेस पे आएगा तो आपका एड्रेस तो चाहिए ना हमें। एंड देन आपको इन्फॉर्म करेंगे हम ईमेल से कि आपका हैम्पर डिलीवर होगा। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये पांच चीज़ें करनी है। आई विल रिपीट अगेन, इट्स हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम जैमिन। सो टू जैमिन मिडलैंड्स लिखकर नेम, टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस एंड आपका ईमेल आईडी। बस इतना करोगे, एंड ऑफ दिस आवर और एंड ऑफ द शो आई विल अनाउंस अ विनर फ्रॉम द मिडलैंड्स। एंड नेक्स्ट आवर होगा लंदन का, जब मैं अनाउंस करूंगा। अभी से अप्लाई मत कीजिएगा। सो गुड लक।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And your £1 in British sterling can get you up to, I'll get you the latest rate because they fluctuate by the hour. And the latest rate of SBI UK is 124.45 rupees, 124.45 rupees for £1 in British sterling. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: And here we are. Football's really happening. Actually, yesterday, who watched the match? Canada versus Qatar. Canada 6 goals and Qatar was 0. Oh my God. Goal after goal after goal after goal after goal after goal. Oh my God. And then Mexico against South Korea. That was another beautiful match with Mexico winning by 1-0 of South Korea. Now at 8 p.m., we got from Seattle Seattle, USA. That is United States of America versus Australia. Yes, they are playing in Group D at 8 p.m. In Group C, 11 p.m., we got Boston Stadium. Boston Stadium say Scotland versus Morocco. That's right, Scotland versus Morocco. What a match is going to be. It's going to be a true test of Scotland. And Scotland अगर जीतेगा तो कोई Boston Tea Party नहीं होने वाली, वहाँ पे boozing party होने वाली है. And a little bit of trivia for you. Do you know एक match जो हुआ अभी World Cup में, it made history, no doubt. FIFA World Cup 2026 में from Czechia versus South Africa at Atlanta Stadium on 18th June, that was yesterday, there was the first, the woman referee in this particular FIFA World Cup match. She is the second female to be a referee. That's Tori Penso. Tori Penso, with her assistants Brooke Mayo and Catherine Nesbitt, the trio, all women referee trio in FIFA World Cup 2026, made history. That's right. But do you know the first woman that was a female referee, that was in FIFA World Cup 2022? That was Stephanie Frappart of France. And she was the first woman ever to be a female referee in World Cup. And of course, Lori Penso yesterday was the second woman with her two assistants.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation,
9: in Dubai.
10: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
11: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
11: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: Discover Malta and Gozo with a twin centre island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 310 Atoll Protected.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
18: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
19: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

A wonderful listener we have is Intashab Ji. Has a wonderful choice of songs. ये गाना उनकी नजर में करता हूँ. कितना प्यारा गाना है फिल्म गीत का. अविनाश वधावन मेरा दोस्त was in that particular film there, yeah, 1992 की. एंड क्या गाया लता जी ने.

तो मैं नाचूंगी। यस, ये गाया रूना लैला ने, लेकिन नाच कौन रहा है? ऑफ कोर्स इट्स अंजलि, ऑल द वे इन पोर्चुगल इन पाफोस एंड पूरी पलटन, मतलब के मेरे दोस्त जयदेव सोनी को लेकर वो लोग सब हॉलिडे मना रहे हैं। एंड दिस इज द थ्री किड्स, आशीष, सरजू एंड नीरा डी इन लॉ दीप्ति एंड ग्रैंड किड्स राधा एंड कृष्णा प्लस लता बेन, ऑल ऑफ यू। एंड हे बडी, यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ एट पाफोस, सो हियर्स अ सॉन्ग फॉर यू। This is for a wonderful singer and friend, Jaydev Soni, going all the way to Paphos.

0: कंटेनर्स
1: सेटको फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड

0: नवनाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted Mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style. This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549।
4: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
5: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
6: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म, एवरी स्पून फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल वार्म। मेक पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल, टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल।
7: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड, यर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस।
6: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ।
8: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
9: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
8: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
9: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे,
8: दर्शन पण अने यूरोप पण।
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
8: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tell me, how cool was that? Asha Wilson and Mohammed Rafizab from the film Genre 1965.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Gold Drive with Sandy Shah.
3: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
1: ऑन गोल्ड ड्राइव.
0: आई वाज नेवर अ ह्यूज फैन. आई डिडंट नो इंग्लिश म्यूजिक टू मच, बट आई एम श्योर दिस इज द वन फॉर आई वांट टू होल्ड योर हैंड फ्रॉम बीटल्स. यस इट वाज आई वांट टू होल्ड योर हैंड. देयर यू गो. वाजंट इट फैबुलस? सो कूल. एनीवे, थैंक यू फॉर ऑल योर आंसर्स. लेट्स लास्ट चांस टू डू दिस इफ यू हैवंट ऑलरेडी हैड अ गो. एंड इट्स अ कोंगोलीज ब्राइड एंड ग्रूम आर नॉट अलाउड टू स्माइल ऑन देयर वेडिंग डे. Yeah, the longest traffic jam ever recorded was for 5 days and moved 0.6 miles a day. One of these statements is a lie. You need to tell me which one.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. Gold Drive with Sandy Shah.

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड, तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
3: Location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे.
6: अंकल तमे पहला थी आवाज छो.
7: आवा एटले केवा.
3: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर.
7: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू बुद्धि वेची आवे छे तू. अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे के जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे.
3: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर.
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
10: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you and it could be you. You and then the same you again. You. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
11: Gold Drive with Sandy Shah.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फैंटास्टिक फ्राइडे, क्या बात है, फैंटास्टिक फ्राइडे को आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी और आप सबकी कैलोरीज बर्न करने में करती है आपको मदद, यानी मेरे गुड कर्मा में देखो कितना एडिशन। फ्राइडे आ गया जी, पूरा सप्ताह निकल गया। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, आगे वीकेंड वाले मूड में? चलिए तो फुल मस्ती मजा इंटरेक्शन गपशप होने वाली है यहाँ पे भाई। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आके अपनी अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाएं। और मेरी साइलेंटिस ने उसको क्या हो गया भाई, कितना उनको पुश करना पड़ता है तब भी जाके वो अपना नाम दर्ज करवाते हैं। एंड धमाकेदार शुरुआत, बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं कि एकदम धमाकेदार शुरुआत हुई है। मखना से हमने इस आवर का आगाज किया, अमित कुमार उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में बड़े मियाँ छोटे मियाँ से लिया गाना, उसके बाद में किशोर कुमार की आवाज़ में कर्ज फिल्म से पैसा ये पैसा। अरे मतलब आप इमेजिन करो, आप घर में इधर झूम रहे हो, यहाँ पे स्टूडियो में तो मेरे अकेले का राज है और ये चार स्पीकर्स। कितना मजा आ रहा होगा। यस, तो फैंटास्टिक फ्राइडे हम अभी मनाने वाले हैं, पूरे 3 घंटे मनाने वाले हैं। और असाइनमेंट छोड़ दूँ ऐसे, कोई सवाल ना पूछूँ आपसे चलेगा ऐसे? बताओ आज सवाल पूछूं कि ना पूछूं? और थोड़ी देर बाद आएगी हमारी कोई ना कोई लाइफ से रिलेटेड थियरी। चलिए, सवाल थोड़ा नटखट एंड चटपटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी सिबलिंग्स हैं तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करेंगे। तो मेरे तो भाई 3 सिबलिंग्स हैं, मेरी 2 बहनें हैं और मेरा भाई सबसे छोटा है। आई एम द सेकेंड किड, सेकेंड जो रिबेलियस किड होता है ना, द ब्यूटीफुल शीप ऑफ द फैमिली। येस दैट्स मी, आई एम दैट वन, द सेकेंड किड ऑफ द फैमिली। तो नटखटपन जो है वो बचपन से ही है। तो कहीं किसी हम एक कॉलोनी में रहते थे, तो किसी फ्रेंड ने बता दिया कि अरे पता है किसी की चप्पल अगर उल्टी रख दो ना तो उस इंसान को ना डांट मिलती है। तो आई एक्चुअली वॉन्टेड बोथ माई सिस्टर्स टू हैव डांट बिकॉज आई आज देम टू शेयर समथिंग, कुछ खाने में कुछ तो था और मैंने फटाफट अपना खा लिया था। एंड देन स्टिल आई वॉन्ट, आई वॉज अ बिट ग्रीडी दैट टाइम, मैंने मुझे और चाहिए था। तो आई आज देम कि तुम अपना शेयर करोगे क्या? एंड बोथ सेड नहीं। तो मैंने बोला कि चलो मैंने सुना तो है, आज मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। एंड आई एक्चुअली वेंट, घर के बाहर शू रैक रखा था तो वहाँ जाके दोनों की चप्पलें या शूज़ जो भी था मैंने वो उल्टा रख दिया। एंड यार आधे घंटे में मेरी आई ने जो डांट फटकार लगाई उन दोनों को, मैंने बोला तो मैजिक है, इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। भगवान झूठ ना बोल पाए, मैंने कई बार वो और अपना नुस्खा आजमाया। तो ऐसी कोई नटखट सी कोई चीज़ आपके पास में है जो बचपन में आपने अपने सिबलिंग्स के लिए की होगी एंड देन यू स्टिल रिमेंबर दैट और अभी भी आप हंसते और समझाते हैं कि क्या यार कितनी बदमाशी कर दी। ठीक है, तो ये किस्सा आपको मुझे सुनाना है, एनी किस्सा जहाँ पे आपने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा अपने सिबलिंग्स के लिए बिकॉज यू वॉन्टेड समथिंग कि वो शेयर नहीं कर रहे थे या वो अपनी ही चला रहे थे, वट एवर द रीज़न वॉज, गिव मी द रीज़न और गिव मी द किस्सा। चलिए कम ऑन, इट्स फ्राइडे यार, याद करो। याद नहीं आ रहा होगा, किसी भी एज में आप पहुंच गए तो भी क्या हुआ, बचपना तो रहता हमारे साथ में। मुझे फटाफट मैसेज करके बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees and 05 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: खैर सभी मैचेस अभी हो गई है, ख़त्म हो गई है। ग्रुप एल में घाना और पनामा के बीच मैच हुआ, घाना ने एक गोल दागा एंड घाना इज द विनर। ग्रुप के में उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया के बीच मैच हुआ तो कोलंबिया ने बनाए 3 गोल, उज्बेकिस्तान ने बनाए 1 गोल, वहाँ पे भी फिनिश टाइम हो चुका है। ग्रुप ए में चेस रिपब्लिक एंड साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ, दोनों ने एक एक गोल दागे, फिनिश टाइम हो चुका है। देन ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया हर्जगोविना के बीच में मैच हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड मेड 4 गोल्स एंड बोस्निया ने केवल 1 बनाया, वहाँ पे भी फिनिश टाइम हो चुका है, फुल टाइम हो चुका है, मैच खत्म हो चुकी है। कनाडा और कतार के बीच मैच हुआ, जहाँ पे कनाडा ने बनाए 6 गोल एंड कतार ने 0, वहाँ पे भी मैच हो चुका है।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: And don't forget, you can get up to 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। It's 23 minutes past 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. तो जरा बात करते हैं फ्रूट थ्योरी के बारे में। जी, आज मैंने असाइनमेंट क्या दिया है, बचपन की कुछ नटखट यादें जो आपने की होगी अपने सिबलिंग्स के साथ। अच्छा, सिबलिंग्स नहीं है, आप अकेले हैं तो कभी ना कभी कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कोई तो बदमाशियां की ना, कहीं ना कहीं तो उन्हें डांट मिली आपकी वजह से। ओके, मुझे वो किस्सा चाहिए, अभी मैं वो यूज़ करूँगी क्या? नहीं नहीं यार, अब तो एनीवेज आपकी किस्से कहानियाँ सुनने में मज़ा आएगा ना, अब तो नहीं यूज़ कर सकती ना, अब तो मैं बड़ी हो गई। ठीक है, द फ्रूट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हमारे घर में जो फ्रूट्स आते हैं वो अगर हम ध्यान से सोचें तो कभी किसी ने उस फ्रूट का बीज डाला, किसी और ने उसे खाद दिया, पानी दिया, किसी और ने उस पूरे पेड़ को बड़ा किया, उस फ्रूट को प्रॉपरली उगने दिया, एंड जब वो फ्रूट पूरा अच्छी तरीके से बन गया जहाँ पे वो लोगों तक उसे भेज सके, तो किसी ने उस फ्रूट को तोड़ा, किसी ने उसे एक ट्रक में डाला, किसी ने उस दुकान पे लाया और दुकान से वो फ्रूट आपके घर में आप तक पहुंचा और आपने वो फ्रूट खाया। कहना क्या चाहती है अश्विनी? यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके लिए कोई चीज़ बनी है, कोई रिश्ता बना है, कोई नौकरी बनी है, कोई जगह बनी है, कोई सीट बनी है, ओके, तो वो आपको मिलेगी ही। सोचिए एक फल कहाँ उगता है और कहाँ से ट्रैवल कर करके आप तक पहुँच जाता है। तो जो इंसान, जो रिश्ता, जो करियर, जो पैसा आपके लिए बना है, क्या वो आप तक नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। अपने आप पे विश्वास रखिए और लाइफ की थियोरीज पे ध्यान देते चलिए। तो आज की थियोरी कौन सी थी? द फ्रूट थियोरी। एंड आपकी किस्से कहानियाँ आने दो, बहुत सारे लोग देखो अपने अपने किस्से कहानियाँ लिखने शुरू हो गए, लिखो आप भी।
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: Step
0: step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose

0: reference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For 1 pound you'll get 124.97 Indian rupee, 368.29 Pakistani rupee, 441.61 Sri Lankan rupee, 162.43 Bangladeshi taka, 83.99 Afghani, 171.34 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.05 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक। यादों की बारात में आपको सुनाया फागुन फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक परत से मेरा दिल ले गया। जी बिल्कुल, आप सबका दिल हम रोज़ ही ले लेते हैं क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो मनोरंजन महसूस हो इन गीतों के द्वारा उससे आप और हम कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं। देखो ना, अभी आप और हम जुड़े हैं पिछले 2 महीने से, तो आप और मैं साथ में रोज़ शाम में हम लोग गपशप करते हैं, आप लोग अपना दिन कैसा बीता बताते हैं, गीतों के साथ आपकी यादें कैसी जुड़ी हैं वो शेयर करते रहते हैं, और साथ में मेरे जो अटपटे से सवाल होते हैं उसमें उतना ही स्पोर्टिंगली आप लोग भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, बहुत डेप्थ वाले अगर क्वेश्चन लेके आऊँ तो आप कहोगे यार एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम है कि कोई सत्संग लगा के बैठी है अश्विनी, गुरु मैया बन के बैठ गई। जी तो थोड़ी देखिए, हर चीज़ का ना एक भेल, मुझे भेल एक्चुअली बहुत पसंद है, तो भेल में कितनी सारी चीज़ें होती ना, तो वो जो हम स्पाइस डालते हैं, वो खट्टी मीठी चटनी डालते हैं, वो चुरमुरा यूज़ करते हैं, नमकीन यूज़ करते हैं, हर किसी का अपना एक फ्लेवर होता है। वैसे ही लाइफ में भी हर किसी का अपना एक फ्लेवर होता है। वो सारे फ्लेवर्स हम अपने इस शो में लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह एंजॉय करते चलें। कितने सारे लोगों ने अपने अपने किस्से कहानियाँ मुझे बताई है। किसी ने कहा कि भाई मेरा भाई मुझे साइकिल नहीं दे रहा था, तो मैंने किस तरीके से साइकिल के टायर की हवा निकाल दी और बाद में जो मतलब मेरी पिटाई और कुटाई हुई है। आई कैन जस्ट इमेजिन। ये सारी चीज़ें जो हैं, और सभी अपने अपने सिबलिंग्स के साथ की जो प्यारी और खट्टी मिट्टी जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार से इतना भरोसे के साथ में आपने अपनी ये जो कहानियाँ मुझे सुनाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इन कहानियों का एक किरदार मैं भी बन जाती हूँ। ये जनरली मेरे साथ में होता है, मैं एक्टर हूँ या रेडियो प्रेजेंटर हूँ, लेकिन जब मैं शो सुनती हूँ आप ही की तरह मैं एक लिसनर बन जाती हूँ जब मेरे कोलीग्स जो है उनका शो प्रेजेंट करते हैं। और मैं जैसे आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, मैं उनको पर्सनल में मैसेज करती हूँ, वाह यार क्या गाना प्ले कर दिया। एंड ऐसे ही कोई वेब सीरीज़ है, कोई फिल्म चल रही है, तो मैं भी उनके साथ एक किरदार बन जाती हूँ, उनके साथ मैं दौड़ती हूँ, भागती हूँ, रोती हूँ, गाती हूँ। आई जस्ट लव डूइंग दैट। ओके, लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर इज ज्योति फिल्म से, आहा लता मंगेशकर की आवाज़ में थोड़ा रेशम लगता है। यही गीत हमें ले चल रहा है 8 o'clock की न्यूज़ की तरफ, उसके बाद आप और हम बिल्कुल रात में 10 बजे तक ये प्रोग्राम है।
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
3: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
4: Aava itle keva.
2: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
4: Maro baap banvani koshish kare tu? बुद्धि बेचिया वैसे तू। अरे जिंदगी अभी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
2: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
0: This Father's Day Sunday, Leica Radio Network teams up with Ambala Sweets.
14: I love you, Daddy.
0: For you to win a box of mixed mitai. Every hour, every station, on the Leica Radio Network.
14: Oh,
15: the evening show with Ashwini.

0: स्वागत है आप सभी का सेकेंड आवर में. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. प्रोग्राम का आगाज किया हमने दो जबरदस्त गीतों के साथ में. पहला था ढोली तारो ढोल एंड दैट, उसके बाद में हमने सुनाया ढफली. तो ढोल और ढफली दोनों हो गया अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आई डिडंट रियलाइज दैट जब मैं प्ले लिस्ट लगा रही थी, लेकिन नाउ आई कैन सी यस इट इज देयर. एंड इसके बाद में होगा डिंग डोंग. हीरो फिल्म से सुनाने वाली हूँ आपको अगला गीत अनुराधा पौडवाल एंड मनहर उदास की आवाज़ में. तो इस आवाज़ में हम क्या करने वाले हैं, हम बातें करेंगे अबाउट गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात नहीं होंगी यहाँ पे.
1: Reminisce those classics on Leica Gold. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day. When you send over £1,000, also 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: क्या बात है, मजा आ गया। अनुराधा पौडवाल मनहर उदास की आवाज में हीरो फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत, द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस मीनाक्षी शेषाद्री। आई डोंट नो, रिसेंटली अगर मैंने शोज पे कहा है या नहीं मुझे याद नहीं, बचपन में आई यूज टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन माधुरी दीक्षित एंड मीनाक्षी शेषाद्री अ लॉट। दोनों की हेयर स्टाइल काफ़ी सिमिलर थी ना, दोनों का फेसिंग भी मुझे सिमिलर लगता था, तो मैं ना कन्फ्यूज होती थी, बट देन ऑब्वियसली गॉर्जियस बालाएं हैं वो। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई फाउंड ऑन द इंटरनेट। एंड ऐसा कैसे होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग मुझे मिल रहा है और वो मैं आप सबसे शेयर ना करूं। सो इन अ मेजर प्रोग्रेसिव टर्मिनोलॉजी शिफ्ट, द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हैज ऑफिशियली ऑर्डर्ड द ट्रेडिशनल टाइटल ऑफ हाउसवाइफ टू बी एंटायरली रिप्लेस्ड विद द टर्म ऑफ जेनरेशन शेपर अक्रॉस ऑफिशियल कम्युनिकेशंस directed toward the local community development authority. This symbolic change aims to formally recognize the vital and profound role stay-at-home mothers handle in nurturing families. And a big, big clap from my side for this gentleman. Abhi, इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ये terminology जो use की है, जहाँ पे generation shaper, स्टे एट होम, नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ। अरे सबसे बड़ा काम होता है इन माय पर्सनल लाइफ, ऑब्वियसली आई वाज अ होम मेकर फॉर गुड 13 इयर्स, आई स्टेड बैक विद माय किड्स, दैट वाजंट अ सेक्रीफाइस, आई वांटेड टू बी विद देम, आई वांटेड टू एंजॉय एंड इकट्ठा ऑल द मेमोरीज विद देम। सो स्टे एट होम मतलब दैट्स द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब। अगर कोई स्टे एट होम मम्स अगर आप सुन रहे हो, प्लीज़ जनरेशन शेपर, ठीक है, आपने कुछ चूज़ किया अपने लिए टू स्टे बैक एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। आई नो एट टाइम्स इट बिकम्स थैंकलेस जॉब, बट जितने जेंटलमैन इस शो को सुन रहे हैं ना, अगर नहीं आपने कहा हो आपकी बेटर हाफ को, आपकी मम्मी को, आपकी सिस्टर को, जो लोग स्टे एट होम हैं और जिन्होंने करियर को तवज्जो देने के बजाय चूज़ किया टू बी विद द फैमिली, है ना, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि उनकी अहमियत आपकी लाइफ में क्या है। बहुत बहुत अच्छा लगता है सभी महिलाओं को जब ये एक्नॉलेजमेंट होती है। इफ़ यू रिमेंबर, कल ही हमने एक्नॉलेजमेंट के बारे में बात की थी शो पे, है ना। तो जितनी भी जनरेशन शेपर्स हैं, आप सबको नमन मेरी तरफ से। एंड अपने आप को प्लीज़ कभी भी कहीं पे भी कम मत समझिए। सो नेक्स्ट टाइम पीपल आस्क यू एंड आप क्या करती हैं, तो आप क्या कहेंगी, जनरेशन शेपर।
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Group L में घाना एंड पनामा के बीच फुल टाइम हो चुका है। ग्रुप के में उज्बेकिस्तान कोलंबिया के बीच फुल टाइम हो चुका है। पहले घाना और पनामा में घाना जीत चुका है, उज्बेकिस्तान कोलंबिया में कोलंबिया जीत चुका है। ग्रुप ए में चेस रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के बीच फुल टाइम हो गया, दोनों ने बराबरी से एक एक गोल दागा। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और बोस्निया के बीच मैच हुआ, वहाँ पे भी फुल टाइम हो चुका है, स्विट्जरलैंड ने जीता है, 4 गोल्स उन्होंने दागे हैं। कैनेडा और कतार के बीच मैच हुआ जिसमें कैनेडा ने 6 गोल्स दागे एंड उनका भी फुल टाइम वहाँ पे हो चुका है, मैच कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This is your business. This is your business supercharged with the help of Zero Accounting Software. These are your numbers. These are your numbers sorted with the help of Zero Accounting Software. This is you.
3: Hi.
2: This is you taking business where you want with the help of Zero Accounting Software.
3: Hello, world.
2: This is your business supercharged with the help of Zero and having your numbers sorted all at the same time so you can finally focus on taking business where you want to. Supercharge your business today with the help of Zero.
3: Search Zero with an X.
1: This is Ashwini in for Anisa Nazir on The Evening Show.
4: Like a gold. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Hi, hello, kecho, mucho, kechi, dave, and ashu, tego, arara, public demand, hariti, avirechu, London, maru, nau, natak, line, patmi, premier league, it's like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo.
8: Patmi, premier league, shows at Trisleep, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561. 947.
4: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue.

0: फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लव दैट ट्रैक. दूसरा आदमी फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में, बड़ा ही रिफ्रेशिंग. परसों हमने बात की थी जैसे चेहरे पे हम ठंडा पानी डाल देते हैं, अभी स्पेशली इस वेदर में जैसे ठंडा पानी हमारे चेहरे पे यार कितना रिफ्रेश लगता है. स्पेशली विद दिस सॉन्ग आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ढोलक विच कम्स इन लाइक ठटक ठटक, उससे बड़ा मजा आता है. ओके चलिए अभी दिस इज कॉम्पिटिशन टाइम, तो जरा ध्यान से सुनिएगा. लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू गुजराती स्टेज. ओके, जिन्हें गुजराती समझ में आती है, गुजराती अच्छी लगती है और गुजराती प्लेस के बड़े बड़े ही फैन हैं, उनके लिए स्पेशली ये, तो आपको दो टिकट्स मिल सकते हैं. एंड गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह. तो ये होने वाला है 26th of June एट 27 पाटीदार समाज वेमली. एंड आपको इस कॉम्पिटिशन में अगर भाग लेना है तो वर्ड लिखिए हस्बैंड और हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप पे भेजिए. एंड दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे 26th. अगेन इट्स विल बी अ वीकेंड वीकडे, दोनों में ना के है, तो अगर आप फ्राइडे इवनिंग जा सकने वाले हो तो ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप जीत गए तो टिकट्स आपको मिल सकते हैं. एंड टिकट्स आर वैलिड ओनली फॉर लंदन वेन्यू. तो यहाँ पे ही अगर आप हैं, लंदन में हैं, तो यहाँ के लिए ही ये वाला जो है कॉम्पिटिशन रखा है. लिखिए फटाफट हस्बैंड एंड अपना नाम लिख के भेज दीजिए, बाकी हमारी टीम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करने वाली है. कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी अभी नहीं, बस कुछ ही देर में.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 124.94 Indian rupee, 368.3 Pakistani rupee, 441.53 Sri Lankan rupee, 162.43 Bangladeshi taka, 83.99 Afghani, 171.33 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो ये छोटी छोटी फैक्ट्स हैं, शायद ही हमारे ध्यान में आते हैं. तो रेन ऑन रूफ और विंडो, ये जब बारिश की बूंदें जब हमारे विंडो पे या रूफ पे आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी को वो बंद कर देती है, बिकॉज वो बूंदें जो हैं डिस्ट्रैक्ट करके उन बूंदों के पीछे, उस बारिश के पीछे हमारा ध्यान आकर्षित करती है. डिस्टेंट ओशन वेव्स, ओशन वेव्स नेचुरली मिमिक द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ कम्प्लीटली रिलैक्स्ड ह्यूमन बॉडी. सो आपका ब्रेन जो है ना वो उस पैटर्न के साथ में घुल मिल जाता है. अगेन हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं उससे कहीं ना कहीं वो भुला देता है. A cat's purr vibrates at the exact frequency range that human medicine used for healing bones and repairing tissues. Walking on fresh snow, the crunch of compact snow is satisfying because it is perfect. मतलब वो जो crunch होता ना वो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक फील करवाता है, कुछ तो कचक सी आवाज आती है. क्या मैं अपनी दो साउंड्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो ऐड कर सकती हूँ? जो हम तड़का डालते हैं ना, छन सी जो आवाज़ आती है, जो हम रायते में या कोशिंबीर में तड़का डालते हैं, दैट इज़ वन थिंग. एंड व्हेन माय डॉग पीचेस सेज ओह, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल साउंड फॉर मी, बिकॉज शी इज़ लाइक यस आई एम देयर विथ यू. सो मेरे लिए तो ये दो साउंड बड़े फेवरेट हैं. चलते हैं इस आवर के आखिरी गीत की तरफ.
1: Feel good classics all day. Leica Gold. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Leica Gold. Harrow. Come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk. Saturday, 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. And celebrate Father's Day in Ambala style.
7: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
8: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
9: Aava etle keva.
7: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
9: Maro baap banvani koshish kare tu, buddhi vechi aave che tu. Are jindagi evi mauj thi jeevje ke jindagi khud tane aavi na puche.
7: Aa Father's Day feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information visit Bakrania Media on Instagram.
9: So thai jaye. Jindagi Once More.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
13: The Evening Show with Ashwini.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: Welcome. This is the third hour of the evening show with Ashwini on Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Greater Manchester. क्या बात है? Fantastic Friday में third hour में आप और हम पहुंच गए and Gujarati play के winner जो हैं that is Rekha Manik जी आपको मिलेंगे दो tickets और हमारी team आपसे contact करेंगी regarding the tickets और बाकी सारी चीजें. देखिए जब भी कोई competition आता है तो ऐसे ना ऐसे जब ready रहते हैं सभी फटाफट details भेजने के लिए and हमारा जो जो कोई भी तरीका है उसे चूज़ करने का तो उसमें जब आपका एक तो लक और आपके लिए वो जो चीज़ लिखी है याद है फ्रूट वाली थ्योरी जो मैंने बताई जो आपके लिए लिखा है वो पहुंच ही जाता है. तो शायद रेखा जी आज आपके लिए ये दो टिकट्स लिखे थे तो आप तक ये पहुंच ही गए. बिल्कुल ऐसा होता ही है. तो गज़ल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली ज़रा लिख के भेजिए फटाफट.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah.
3: Like a gold.
2: Like a gold.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप एल में घाना और पनामा के बीच मैच हुआ जिसे जीता घाना ने। ग्रुप के में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच मैच हुआ जिसे जीता कोलंबिया ने। ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका दोनों में ड्रॉ रहा। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया के बीच स्विट्जरलैंड ने मैच जीता एंड कैनेडा कतार ने मैच हुआ तो कैनेडा ने वो मैच जीता। साथ ही डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 9:19, इट्स 19 minutes past 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। भाई जब भी कोई कंपटीशन होती है और जब हम नहीं जीतते हैं तो बिल्कुल बुरा ना माने, फ्रूट याद रखिए। ओके, सो फादर्स डे हम सभी सेलिब्रेट करने वाले हैं संडे को। वेरी हैप्पी फादर्स डे, अ वेरी हेल्दी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स अराउंड द वर्ल्ड। आप लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, और न जाने कितने लोग शायद वो थैंक यू एक्सप्रेस करते हैं और शायद कुछ लोग एक्सप्रेस ना करें। पर ये ज़रूर याद रखिए कि हम में से हर एक जो हैं उन सभी को लेके, हम सभी के पापा लोग जो हैं, दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस, है ना। क्योंकि हम जब माइग्रेट करके आए हैं इस कंट्री में, यहाँ पे आके हमने अपनी नई दुनिया बसाई, बहुत सारे चैलेंजेस आए हम सबको यहाँ पे, पर जिस तरीके से उनका हमेशा एक सपोर्ट और बैकिंग रहा होगा, सेड वे और अनसेड वे। एंड पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि कई बार जो हैं विथ माई फादर इज़ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, यू नो, मतलब तारीफ़ के पुल बांधने तो बहुत तारीफ़ के पुल बांधते हैं, और जब उनको कुछ कहना होता है ना तो वो रोकते नहीं हैं तो बिल्कुल अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो शायद मन की जो अच्छी बात होती है अपने बच्चों के लिए कि हाउ प्राउड दे आर, शायद नहीं बता पाते। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब वो खुद बच्चे थे तो शायद उन्हें प्यार या इम्पॉर्टेंस या अप्रिसिएशन या अक्नॉलेजमेंट कभी जताया नहीं गया, तो बिकॉज उन्हें जताया नहीं गया तो शायद बेचारे वो समझ नहीं पाए कि किस तरीके से उन्हें भी जताना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए उन्हें प्यार मोहब्बत नहीं है एंड दे आर नॉट प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम श्योर वो सारी चीज़ें होंगी, बस कैसे बोले वो बोलना नहीं आता। लेकिन अगर आप उनकी लेगेसी फॉलो कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और अपने प्यार भरे रिश्तों को क्या सोचते हैं कभी बोल के दिखाइए।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We get it. Making tax digital can sometimes feel daunting, but with Xero's HMRC recognized software, you quickly get to feeling confident. If you're a sole trader or landlord whose income tax is going digital, not only is Xero MTD ready, it also gives you better control of your finances, like having the clear financial visibility you need every quarter to avoid end-of-year tax surprises. Change the way you see MTD. Search MTD Ready with Xero.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 0208574 8410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
8: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
8: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
7: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो बड़े ही फैंटास्टिक गीत आप सबको सुनाए हमने, उसमें से पहला गीत था आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन की आवाज़ में, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, इतिहास पन से सुनाया आप सबको, बड़ा मेलोडियस सॉन्ग था, या आई लाइक दैट सॉन्ग। एंड गज़ल, ओहो क्या बात है, आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान से सुनाई थी आप सभी को गज़ल। टाइम अभी भी है जी, मैं आप लोगों का साथ निभा रही हूँ यहीं पे। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: लाइका गोल्ड। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर ऑन द इवनिंग शो।
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable support. Supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. अम्बाला स्टाइल। टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA। थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/LAIKA or call 0203-129-9840.
7: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
8: You know how fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
0: The Evening Show with Ashwini.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 124.82 Indian rupee, 368.11 Pakistani rupee, 441.4 Sri Lankan rupee, 162.38 Bangladeshi taka, 83.94 Afghan Afghani, 171.29 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LAIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.09 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: बस टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है अश्विनी, टाइम फॉर यू टू से टाटा बाय टू ऑल योर प्यारे प्यारे लिसनर्स। तो भाई दो दिन की छुट्टी और आपकी और मेरी कट्टी, हाँ नॉट वैसी कट्टी बट कट्टी, क्योंकि मैं नहीं आने वाली हूँ। सो मंडे शाम को मिलेंगे आप और हम। अपना खूब ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, प्यार दो, प्यार लो, लाइफ सुंदर है उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए। अगर मैं ये लाइन नहीं बोल पाई तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइंस आप याद नहीं रखेंगे, है ना। चलिए, हैव अ फैंटास्टिक सैटरडे एंड संडे, मौसम मस्ताना है, टेक केयर, गुड नाइट।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड
2: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: पियो के उखड़ जाए दम, बाटली मिले तो पूरी बाटली खत्म। हर जब विस्की से मन भर जाएगा तो तौबा कर जाएगा, मन पे जो कोई काबू कर जाएगा, भव सागर से वो तर जाएगा। मोटी अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरुजी, ठीक है।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप

दे ठांडे माँ फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे भांडे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: This is Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.